आगे को किछ तुल्हा बांधो। कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा, नाम दा तुल्हा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

बुद्ध सो दीपक जू जियारे, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रु कहंदे ने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ लै, ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे, ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहेगुरु।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लम्मी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता, अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमा दी रख्या करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वड़ा है। एक वरी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण

लावते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े होए घोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने कहा बच्चियो घोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे घोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शिद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही ने जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच ए अमृत इस तरह प्राप्त कीता ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद कीता जांदा है।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए तो आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए, सेवक खलोता है देख रहा है। अचानक इशनान करदे हैं, धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड, अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

एक गुफा च बह जा। करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा

कीर्तन करने वाला तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला पर मैं वेला सी कारे कहंदे ने काम उस पर

गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन साहब, गुरु हर गोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु हर कृष्ण साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अते दसवें गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, आनंदपुर साहब छड़िया एक गुफा विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 11 महीने 11 दिन बैठे रहे। 11 महीने अते 11 दिन जदों होए, 11वें दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख नूं इक गल याद कराई।

अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती कीती। गुरु साहिबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे नहीं, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा। सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? उस सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हां, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो। जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे, ए सूरत बड़ी सोहनी है, पर किन्नू दिया? मसंदा नू, पंडतां नू, साधुआं सन्यासियां नू किन्नू दिया ए सूरत? क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नू चंगी तरह साफ करके लजाने आ, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतियां सन, अखां खोलियां। एक पहरेदार सिख नूं कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जोड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे हां, अरदासां करदे हां, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता। ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आए, तीन दिन हो गए ने तेनू रोंदे हां, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना, पर साडे वास्ते बेटा की लेके आए। साध संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी। सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिहदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जदों ओह काबल गया सी। दूसरा कंगन जिहदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, ओह कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
क्योंकि चेतों ने कहा सी कि सिखा तेरे नाल गुरु साहब जी बड़े नाराज ने, तू दरबार विच ना जाई। ए सुन के गुरु साहबा ने अपने दोनों हाथ अगे कर दिते ते नाले कहन लगे सिखा ऐ देख मेरे हाथ ते खाली ने, तेरे कंगन मेरे कोल नहीं आए। सिख ने कहा पातशाह मैं ता चेतो मसंद नू दिती सन, ते चेतो मसंद संगत च बैठा सी, उठ के खड़ा हो गया। कहन लगा पातशाह ए झूठ बोलदा है, ए कंगाल कंगन कित्थों दे सकदा है।

चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। ऐ मनुख हृदय रूपी वेड़े विच परमाता परमात्मा रूपी नामदा दे तू चानना कर लवे, अज्ञानता रूपी हनेरा हमेशा हमेशा ले खत्म हो जाना है जे परमात्मा रूपी नामदा तू हृदय रूपी वेड़े विच चानना कर लवे। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांदना। आओ आपा मिरल के इन्हों तुकानों पढ़िए कोई रसना खाली।

हरजी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा

सोलह सी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख

दूर वगा के मार दिए। बच्चा भज के जांदा है, गेंद चुक के लौंदा, फिर मां नूं आके परेशान करदा है। मां फिर उस गेंद नूं लेके दूर वगांदी है, बच्चा फिर भज के जांदा है। इस प्रकार नाले ए मां अपना काम पई करदी है, नाले अपने बच्चे नूं खेड़दा वेख के बड़ी खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। मन विच उमंग है, मन विच खुशी है, मेरा बच्चा हुण खेडण जोगा हो गया। इसे प्रकार कुछ समा बीतिया, इस वारी बच्चे ने गेंद लिया के फिर मां नूं दित्ती। मां ने बेध्याने होके उसे तरह फिर गेंद वगा के मारी, दूर सुट्टी। इस वारी ए गेंद जेड़ी सी बनेरी नाल टकरा के थल्ले जा पई। मां अपने कम विच मशगूल है, इधर ए बच्चा पहले वांग ही भज्जा उस गेंद दे पिछे। हुण बच्चे नूं की पता है कि ए बनेरी तो अगे कोठा खत्म है। छोटा जा बालक, मासूम बच्चा गेंद दे पिछे भज्जा, गेंद ते टकरा के बनेरी नाल ओ थले डिग पई। ते बच्चे ने जो ही गेंद दे पिछे भजना शुरू कीता, ओदा भी ध्यान चुक गया ते बनेरी नाल टकरा के ओ भी धड़ाम करके थले जा पिया। मासूम बच्चा, छोटा जा बालक, फुल जिहा ओ बच्चा टकराया बनेरी दे नाल, थले जा डिगा और डिगदे ही ओदे प्राण खत्म हो गए। मां ने वेख्या, एकदम कुरलाहट मच गई, रुदन शुरू हो गया। जिथे थोड़ी देर पहला खुशी सी, जिथे थोड़ी देर पहला खेड विच मस्त सी ए मां, बच्चे नूं वेख के खुश हो रही सी, ओते हुण रुदन हुंदा पिया। विरलाप कीरने पई पा रही है ए मां। आला दुआला कट्ठा हो गया और इस बच्चे नूं वेख वेख के जो थोड़ी देर पहला खेड़दा पिया सी ते हुण बिल्कुल इहदे प्राण खत्म ने। सारी ही हैरान हन। भगत कबीर जी इस घटना नूं वेख के कहंदे ने, ए भोली मां, ए तां सोचदी है कि मेरा बच्चा हुण दिन पर दिन वड्डा हुंदा जा रहा है, असलियत तो ए जाणू नहीं। असलियत की है? आप कहंदे ने, इतना क न जाने जे दिन दिन औध घटत है। इसनू ए पता नहीं कि मेरा बच्चा वड्डा नहीं, बल्कि असलियत ए छोटा हो रहा है। ओ किवें? भला जे इस बच्चे दी उम्र लिखी है 5 साल, अज ए 4 साल दा हो गया है, बाकी तां 1 साल रह गया, 1 साल बाकी रह गया, 4 बीत गए। भगत जी कहंदे ने, बस ऐसे भुलेखे विच असी पए होए हां, सारा संसार पिया होया है। सच नूं छड़ के, परमेश्वर नूं छड़ के, असी झूठी दुनिया दे मगर लग के इनू सच्चा करके मन बैठे हां। हजूर भगत

ऐसा सोना है। भाई साहब कहने ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चला जा, पांच पांच बारी प्रयागराज ला के त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख नु इशनान करा देवे, एक सिख नु नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के देवे, ओदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुन्न। कहंदे ने सिख नु प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तां सब नु ही पियाउणा चाहीदा, पर गुरु के सिख नु गुरु शब्द दी विचार वाले नु गुरु प्यार वाले नु आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र दी यात्रा होवे, कुरुक्षेत्र वर्गे महान तीर्थ दी यात्रा होवे, जे कितने सिख नु प्रसादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते समेत जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन्न हो गया। भाई साहब कहंदे ने एक होर वड्डा पुन्न भी है, एदो भी वड्डा पुन्न है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी ने। कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता है, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बनना, एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे कि सिख नु शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द दे लड़ ला दे, उदो वड्डा पुन्न। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालों एक सिख नु शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द दे लड़ ला दे। एक होर गल कहने साधा दे दर्शन करने वास्ते, महात्मावां दे दर्शन करने वास्ते, पुन्न आत्मा दे दर्शन करने वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दे दर्शन करने जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नु मुठियां भर के सुआ देना एक पासे। इस छोटे जतन नाल वड्डा फल, बहुत वड्डा महात्म है, गुरु के सिख दी खुशी गुरु की खुशी है। और एक बार ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंत कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया, कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जाए, उथे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के बचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे बचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान होए, हथ बन्ने। महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख नु शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख दी खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे। महाराज सच्चा पातशाह सिख दी खुशी

सच्चा देखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिंदगी देखे पत्त चंगे से के पौड़ी तो चमजरा को तुरपाया ताकि अपनी खसम ते आया न जलता के उसके जनाई तुम एक ही जग तू आया।

अंग साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन लिखे चुरी कहे तौलन कू फटे हरिए सुध होवे ता फट पाए पौड़ी जिते अंद सब को देख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवरियां गया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड़ मेतरी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना का कराएंदा कर मंगल।

चलो पहला दूजा एक ने ही आस की ही दूजा लगे जाए नानक आस काटिए सभी समाए चंगा चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशकू।

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग भौरन गुरत।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: Deve alag alag disne kan sot ek sharir paave alag alag han par jot oha chugat sai sai aaya pher palakne पर एक गल किसे किसे ने समझी किसे ने आख्या ए गुरु होर ओ गुरु होर इस दी मर्यादा कुछ होर उस गुरु दी मर्यादा कुछ होर भाई गुरदास साहब जी कहना कहते ने इस भुलेखे विच ना रहियो जे इस गलत फहमी विच रहा कि जो घर विच सुख साधन होण वो भी मुक जाणगे। गुरु कलगीधर पातशाह कहिंदे ने जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई बिन समझे सिद्ध हाथ न आए। रिधियां सिद्धियां उन्हां दे घरां विचों जांदियां रहियां जिन्हां ने आख्या ए गुरु कुछ होर ओ गुरु कोई होर।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

0: You're listening to CCAP Radio.
1: भाई साहब जी को लोग श्रवण करिए।
2: गुरु पातशाह जी की पवित्र बाणी द्वारा अपने मन दिया तारा जोड़िए गुरु चरणा नाल। हजूर ते कह रहे हैं

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी प्रवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी प्रवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

मेरे जीवन दी बेड़ी पापा नाल भर गई है। विषय विकार चुगली निंदा बखीली दे चखड़ झुल रहे ने। हे प्रभु तू कृपा कर।

सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच कोई मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, आ छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने, अजकल ते ढाईआं ढाईआं तिन्नां तिन्नां सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी, तेरी गोत केड़ी है? ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

परमात्मा अपने सेवक दा मददगार बनदा है। करतार ने सदा तो ही अपने दास दियां सारियां मनोकामना पूरियां कीतियां हैं। गुर पूरा नमस्कारे, प्रभु सबे काज सवारे। सेवक नू परमेश्वर ने किसे किस्म दी थोड़ नहीं रहन दिती। साई फरमाउंदे ने, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन पैज सवारे। जेड़ा मनुख पूरे गुरु दी शरण पैंदा है, ओट लैंदा है, आसरा लैंदा है, साई फरमाउंदे ने यकीन जानो कि परमात्मा ने उस दे सारे काम सवार दित्ते। प्रभु ने उस मनुख उते मेहर दी निगाह कीती ते लोक परलोक विच उस दी लाज चंगी तरह रख ली। शब्द विच साहिबां दा फरमान।

तू मेरा वड्डा मालिक है, तेरा नाम पदारत जो मैनू गुरु दी राही मिलिया है, ये तेरी ही बख्शिश है। जन नानक एक ते आया, सर्ब फला पुन पाया। जिस मनुख ने गुरु दी शरण पै के परमात्मा दा सिमरना शुरू कर दिता, उसने सारे फल देन वाली